0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Oh, you're reading a romantic novel. So interesting. उस नॉवल का नाम भेज, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ. And I'm like, तू एक रोमांटिक नॉवल पढ़ना चाहता है? This is a guy I met on a dating app, and I was telling him कि सारा एडम्स की किताबें मुझे कितनी पसंद हैं, because वो कितनी फेरी टेल टाइप रोमांटिक है. And he said to me कि मैं भी पढ़ के देखना चाहता हूँ कि उसके बारे में ऐसा क्या है दैट यू फाइंड सो इंटरेस्टिंग. और मैंने खुशी खुशी उसको बता दिया व्हाट द बुक वाज. एंड यू नो व्हाट द नेक्स्ट थिंग ही डिड, अगले दिन उसने मुझे फोटोग्राफ भेजी होल्डिंग दैट बुक, एंड ही वाज लाइक,

यू नो मैं इसे पढ़ के तुझे बताऊंगा कि मेरे फेवरेट चैप्टर्स कौन से थे. एंड आई वाज लाइक राइट देयर इज अ ग्रीन फ्लैग दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जीवन में ये सीखने लग गई हूँ दैट व्हेन समवन इज ट्रूली इंटरेस्टेड इन यू, वो काफ़ी हट के इंटरेस्टेड और क्यूरियस चीज़ें करते हैं अराउंड यू सो दैट दे कैन एक्चुअली गेट टू नो यू बेटर. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा ही कोई ग्रीन फ्लैग आपको टकरा गया है, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. नहीं, एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieta la murga. Milci, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। Inefficient,
5: very complex,
6: clumsy or
5: confusion ही confusion.
4: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन जब आपकी छोटी बहन की ट्यूशन टीचर आती है, सडनली यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस क्योंकि यू आर होपिंग टू हुक अप विद हर. ऐसे जो भी आपके डर्टी कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड वी विल गेट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: और आज मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर हु हैज अ वेरी एक्साइटिंग कन्फेशन टू टेल मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय,
1: कैसे हो आप?
3: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
1: झूठ मत बोलो कि आप अच्छे हो, मुझे झूठ सुनाई दे रहा है. इधर आपके साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था. मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था, और बाकी की कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट टू फिनिश आप मुझे अब बता दो.
3: हुआ ये कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम आ रहे थे कॉन्सर्ट से वापस. हम पहले भी काफी मिल चुके हैं, पर यार इतना सीधा कोई कैसे हो सकता है? मतलब आज के जमाने में लड़का इतना सीधा यहाँ से लड़की अप्रोच कर रही है और नो नथिंग, कुछ एक्शन ही नहीं है.
1: बट ही इज इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो आपको फ्रेंड जोन कर रहा है?
3: नहीं यार, मतलब ठीक है, रोज आई लव यू, ये वो ड्रॉप करना, पिक करना, टाइम पे लेना, सब कुछ, डिनर, डेट, एवरीथिंग इज देयर, बट इतना प्यार नहीं चाहिए यार, थोड़ा लस्ट भी चाहिए होता है जिंदगी में.
1: आई अग्री विद यू, डू कैरी ऑन. तो फिर क्या हुआ?
3: तो बस फिर उस लस्ट के चक्कर में मैंने सोचा हम एक कॉन्सर्ट पे गए, वी गॉट अ लिटिल ड्रंक एंड आई वाज रियली ड्रंक, ठीक है. और तो मैंने पहले से ही ना सारी अरेंजमेंट कर दी थी. फिर उसके बाद फिर मैं उसने मुझे घर ड्रॉप किया एंड देन एवरीथिंग वाज रेडी. ओके, एंड वी वर टॉकिंग ऑन टेक्स्ट, सडनली व्हाट आई थॉट कि चलो लेट्स यू नो लेट आई थॉट ऑफ सेंडिंग अ पिक्चर टू हिम.
1: एक सेकंड, तो बेसिकली यू वर रेडी टू गेट इन बेड एंड गेट नॉटी, लेकिन उसने आपको ड्रॉप कर दिया और वो कट लिया वहां से.
3: हाँ, वो कट लिया. फिर भी मैंने सोचा कि इमीडिएटली कि जैसे मैं घर पहुंचूं एंड देन आई कैन सेंड अ नाइस यू नो स्टीनी हॉट पिक्चर टू हिम.
1: हां राइट, ऑफ कोर्स दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट इन टाइम.
3: एंड मतलब नॉर्मल लड़का क्या करेगा रोशि,
1: तो फिर
3: एंड फिर कुछ नहीं. एंड आई वाज वेटिंग कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा. एंड आई लाइक एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई मैं कॉल करूं तो करूं कैसे, फोटो भेजने के बाद अपना कॉल भी कुछ.
1: एग्जैक्टली,
3: हां, सो आई वाज वेटिंग एंड उसके बाद उस चक्कर में एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. आई वोक अप विद व्हाट, मेरा दरवाजा इतनी जोर से बैंग हो रहा था. यू वोंट बिलीव, वो जो पिक्चर थी वो मैंने अपने फैमिली ग्रुप, नॉट इवन माई इमीडिएट फैमिली बट खानदान वाले फैमिली ग्रुप पे चली गई. घर पे महायुद्ध, महाभारत में पता नहीं कौन सा वर्ल्ड वॉर 10 फट चुका था.
1: Dude, आप रात को कितने थके हुए थे और how drunk were you that आपने उसे फैमिली ग्रुप में भेज दिया? It might just help you, here's a little roshification.
4: You've been roshified.
1: I hope that makes you feel better, my darling.
3: Yes, it does. Thank you, Roshi.
1: Thank you, my love, for sharing your confession with me. और अगर आपकी भी जिंदगी में है ऐसी ही कोई confession, feel free to hit me up. मेरी जान on Insta या FB, but whatever you do, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ఫ్యాక్టరీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
1: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్. कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: म्यूजिकल डॉक्टर्स।
1: पता है वो इतना पुगी है ना कि मैं उसे जितनी भी बातें कर लूँ, 4 घंटे 5 घंटे ऑफिस के लोगों के बारे में, एंड ऑफिस के लोग काफी अनोइंग है, बट वो हमेशा सुनता है। व्हाट अ पुकी ग्रीन फ्लैग दिस गाय इज। ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी नई प्रोड्यूसर का BF इज लाइक वेरी क्यूट एंड ऑल। वो उसके बारे में तारीफ करी थी, तो आई सेड कि उसके बारे में कुछ बुरा नहीं है। कहती हाँ उसका टेम्पर थोड़ा सा खराब है, बट वो ज्यादा गुस्सा होता नहीं है, और जब वो गुस्सा करते तो मैं गाना गाने लग जाती हूँ। आई वाज लाइक दैट्स अ नाइस वे ऑफ डीलिंग विद समवन हू इज हैविंग अ टेम्परमेंटल फ्लेयर अप। अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी प्रोड्यूसर गुरुषा की तरह एक ऐसा ही ग्रीन फ्लैग्ड पूकी है, दैट्स सच अ रेरिटी, और उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मुझ जैसे सिंगल इंसान पर थोड़ी तरस करें, दया खाएं, तरस करें, इट डजेंट मैटर, जो भी खाना खा के मुझे मैसेज कर देना। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो व्हाइल यू हिट मी अप ऑन योर सोशल मीडिया डार्लिंग, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार ऑनेस्ट टू गुडनेस दिस इज नॉट कूल एंड आई वाज टेलिंग गुरुशा माय प्रोड्यूसर दिस एंड उसको मेरे लिए पता नहीं कितनी सिंपैथी हो रही है उसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा लाइक शी केयर्स अ लॉट. ओके सो द न्यूज इज दैट तारा सुतारिया इज डेटिंग आदित्य रॉय कपूर. अगर इन्हें फ्रटर्निटी में ही शिपिंग खेलनी है तो हम सब गरीबों का क्या होगा. आदित्य रॉय कपूर वाज समवन आई कॉल्ड द डिब्स ऑन बट दिस इज क्लियरली नॉट वर्किंग आउट. और श्रद्धा कपूर के साथ उसका इतना एंडलेस

0: प्यार था, उसके प्यार में उसने अपनी दाढ़ी उगा ली थी, अपनी आंखें ऐसे डोर टाइप कर ली थी, अब सडनली वो सब चला गया है, फरतारा सुतारिया, जस्ट बिकॉज उसे पियानो बजाना आता है और गाना गाना आता है. यार आई हेट दिस. मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया. सी वर्ड बनना वो हम खुद ही सीखे हैं यार, हमारे मम्मी पापा इसमें कोई योगदान नहीं था. तो हम जिंदगी भर सिंगल रहेंगे. आदित्य रॉय कपूर विल एंड अप स्लीपिंग विद Everybody in the industry. ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. स्लीपिंग विद आई मीन कि कैंपिंग जाओगे तो एक ही टेंट होता है ना, यू नो व्हाट आई मीन. ऑन दैट नोट, अगर आपके पास कोई बॉलीवुड शिपिंग गॉसिप है, क्योंकि गुरुशा इज गोना कीप टेलिंग मी, बट आई वांट यू टू टेल मी एज वेल, देन हिट मी अप ऑन माय सोशल्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड आदित्य, आई विल नेवर फॉरगेट दिस. ओके, ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: ও চানতি কুড়ি, ও চানতি কুড়ি.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: Ochanati kuri. Ochanati kuri.
1: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana.
3: Rabbana.
2: Burga, burga. La vieja la burga.
3: Milchi, burga.
4: Hello? Hello?
5: Sir, very good evening. Bank support.
4: हाँ बोलिए
5: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
4: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
5: बात है सर, आप तो सर पूरा बताइए
4: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
5: बता सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
4: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
5: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
4: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
5: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
4: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
5: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
4: पागल पागल है,
5: अब तो देने पड़ेंगे सर.
4: हेलो.
5: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
4: कौन बोल रहा है? विपिन.
5: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
4: अब
5: तो फंस गए सर.
4: हेलो
6: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
4: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
6: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
4: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
6: जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे तो लाइफ में ना इतनी गर्मी हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता. लेकिन टू मेक आर गर्मी वाली लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, आई हैव विद मी द ऑथर ऑफ द बुक मदिरा, पराग शास्त्री, जिन्होंने अक्रॉस इंडिया जो भी लोकली अवेलेबल चीजें होती हैं, स्पाइसेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा, उससे जो लोकली प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स बनते हैं ना, उसके बारे में बात की है. एंड ऑन द मिर्ची हॉटलाइन विद मी राइट नाउ इज पराग शास्त्री. वूहू, हेलो.
2: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: Very good. Good talking to you.
1: Good talking to you too, Parag. In fact, it's going to get better. क्योंकि मेरा आपसे सवाल ये है, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन dating life लोगों की रुकती नहीं है इतनी गर्मी में. और in a circumstance like that, अगर एक इंसान को अपने घर में ही कुछ interesting drink बनानी हो to make their dating life way cooler, way more adventurous, तो ऐसी क्या चीज़ है जो जल्दी से घर पे बन जाती है और partner बहुत impress हो जाएगा या first date बहुत impress हो जाएगी?
2: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इफ यू आस्क मी. थैंक यू. राइट, ऑनेस्टली क्या करते हैं ना, पीपल समटाइम्स ओवर कॉम्प्लिकेट अ सिचुएशन लाइक दिस एंड अ ड्रिंक लाइक. इफ समवन इज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अगर आपको मतलब अगर आपको राइट इम्प्रेस करना है कम एफर्ट में, राइट, आई थिंक आई हैव अ वेरी परफेक्ट ड्रिंक विच कम्स टू माई माइंड राइट नाउ. राइट, let's talk about Kokum cooler, right? Because that's really very, very, you know, refreshing. Just need basic Kokum, right? You need chilled soda, right? And a pinch of black salt and a few leaves of mint. That's what you need, right? So the idea is just shake all of them, right? Say, for example, take Kokum or Kokum syrup, whatever you have, right? Chilled soda. Add a pinch of black salt to it. Shake it well. Pour it in a glass. And a mint leaf on top. I think that's going to do magic.
1: So, itna simple.
2: We are all going through right now. And the idea is, you know, half the battle is presentation, right?
1: But,
2: right. So, how you pick up a glassware of your choice, that's more important for to impress people. And I think Indian kitchens, right, are anyway full of amazing flavors, so you don't need to bother about it anyway.
1: अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस सोडा, थोड़ा सा कोकम का सिरप, थोड़ा सा उसमें काला नमक, उसको स्टर कर दो और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना डाल दो. दैट इज इट. इट इज लाइक दिस अमेजिंग. यू आर सच अ ड्रीम बोर्ड पराग. मेरा बस चलता तो मैं आपसे अगले पूरे महीने सवाल पूछती रहती. बट थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो विद मी. And all of you people out there, जो पराग के इस किताब के बारे में intrigued हैं, you can find the book online everywhere, in bookstores near you. और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो about my drink of choice, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

जस्ट इन अ लाइफ अपडेट, कल मैंने घर पर गुलाब जामुन बनाने की कोशिश की थी और मेरे जो गुलाब जामुन के जामुन थे दे एंडेड अप बिकमिंग सो हार्ड कि इतने हार्ड तो मेरे रिलेशनशिप्स भी नहीं थे. एंड देन अल्टीमेटली आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद देम, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल कर ये जो गुलाब जामुन के जामुन थे इन्हें अपने बैग में डाल रही हूँ. एनी टाइम समवन हरासेस मी, मैं बस ये एक जामुन उठाऊंगी, बंदे के मुंह पे मारूंगी, हो सकता है वो जिंदगी भर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को प्लीज करने के लिए कुछ खाना बनाने की कोशिश की और उसका एंड रिजल्ट ये था कि आपकी सेल्फ एस्टीम टुक अ रियली बिग हिट, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. So hit me up darling, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज का वर्ड ऑफ द डे है डिलुलू, जो आप थे जब आप प्यार में थे। डिलुलू का लॉन्गर वर्जन एंड एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है डिल्यूजनल, अर्थात वो इंसान जो प्यार में अंधा होकर पागल हो जाता है। आई मीन दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड बट यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि जब आप प्यार में थे तब इतने अंधे थे कि सामने वाला आपके सामने तीन और लड़कियों को डेट कर रहा था, लेकिन आपके प्यार के अंधेपन में आपको लग रहा था वो तीनों उसकी बहनों जैसे हैं। मुंह बोली बहन हुआ तो क्या, आगे मजे ले लिए पंगे। आई एम सेइंग दिस लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट माई एक्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैं इकलौता इंसान थोड़ी हूँ इस जिंदगी में जिसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ है। आपके साथ इससे वर्स हुआ है ये मुझे पता है, पर अब आपको क्या करना है, मुझे टेक्स्ट करना है सो दैट हम नोट्स कंपेयर करेंगे एंड देन वी रियलाइज दैट बोथ ऑफ अस हैव हैड इट इक्वली बैड। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। आप मुझे ढूंढोगे इंस्टा या FB पर एंड देन वील डू प्यार का पंछी बोले कुकू कुकू, एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la.
2: Rámbala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन जब आपकी छोटी बहन की ट्यूशन टीचर आती है, सडनली यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस क्योंकि यू आर होपिंग टू हुक अप विद हर. ऐसे जो भी आपके डर्टी कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड वी विल गेट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: और आज मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर हु हैज अ वेरी एक्साइटिंग कन्फेशन टू टेल मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय,
1: कैसे हो आप?
3: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
1: झूठ मत बोलो कि आप अच्छे हो, मुझे झूठ सुनाई दे रहा है. इधर आपके साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था. मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था, और बाकी की कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट टू फिनिश आप मुझे अब बता दो.
3: हुआ ये कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम आ रहे थे कॉन्सर्ट से वापस. हम पहले भी काफी मिल चुके हैं, पर यार इतना सीधा कोई कैसे हो सकता है? मतलब आज के जमाने में लड़का इतना सीधा यहाँ से लड़की अप्रोच कर रही है और नो नथिंग, कुछ एक्शन ही नहीं है.
1: बट ही इज इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो आपको फ्रेंड जोन कर रहा है?
3: नहीं यार, मतलब ठीक है, रोज आई लव यू, ये वो ड्रॉप करना, पिक करना, टाइम पे लेना, सब कुछ, डिनर, डेट, एवरीथिंग इज देयर. बट इतना प्यार नहीं चाहिए यार, थोड़ा लस्ट भी चाहिए होता है जिंदगी में.
1: आई अग्री विद यू, डू कैरी ऑन. तो फिर क्या हुआ?
3: तो बस फिर उस लस्ट के चक्कर में मैंने सोचा हम एक कॉन्सर्ट पे गए, वी गॉट अ लिटिल ड्रंक एंड आई वाज रियली ड्रंक, ठीक है. और तो मैंने पहले से ही ना सारी अरेंजमेंट कर दी थी. फिर उसके बाद फिर मैं, उसने मुझे घर ड्रॉप किया एंड देन एवरीथिंग वाज रेडी, ओके. एंड वी वर टॉकिंग ऑन टेक्स्ट, सडनली व्हाट आई थॉट कि चलो लेट्स, यू नो, लेट आई थॉट ऑफ सेंडिंग अ पिक्चर टू हिम.
1: एक सेकंड, तो बेसिकली यू वर रेडी टू गेट इन बेड एंड गेट नॉटी, लेकिन उसने आपको ड्रॉप कर दिया और वो कट लिया वहां से?
3: हाँ, वो कट लिया. फिर भी मैंने सोचा कि इमीडिएटली कि जैसे मैं घर पहुंचूं एंड देन आई कैन सेंड अ नाइस, यू नो, स्टीमी हॉट पिक्चर टू हिम.
1: हां, राइट, ऑफ कोर्स, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट इन टाइम.
3: एंड मतलब नॉर्मल लड़का क्या करेगा रोशी,
1: एग्जैक्टली. तो फिर
3: एंड फिर कुछ नहीं, एंड आई वाज वेटिंग वेटिंग वेटिंग कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा. And I was like, and I was just thinking कि भाई मैं कॉल करूं तो करूं कैसे, फोटो भेजने के बाद अब मैं कॉल भी कुछ
1: exactly.
3: And उसके बाद उस चक्कर में and I went off to sleep. You won't believe what happened.
1: What?
3: I woke up with what? मेरा दरवाजा इतनी जोर से बैंग हो रहा था. You won't believe. वो जो पिक्चर थी वो मैंने अपने फैमिली ग्रुप, नॉट इवन माई इमीडिएट फैमिली बट खानदान वाले फैमिली ग्रुप पे चली गई. घर पे महायुद्ध, महाभारत, कौन सा वर्ल्ड वॉर 10 फट चुका था.
1: डूड, आप रात को कितने थके हुए थे और हाउ ड्रंक वर यू दैट आपने उसे फैमिली ग्रुप पे भेज दिया? इट माइट जस्ट हेल्प यू, हियर्स अ लिटिल रोशिफिकेशन.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: आई होप दैट मेक्स यू फील बेटर, माय डार्लिंग.
3: Yes, it does. Thank you, Roshi.
1: Thank you, my love, for sharing your confession with me. And if you have any confession in your life, feel free to hit me up. My jaan on Insta or FB, but whatever you do, don't go anywhere, because we're here to come. Listen to Mirchi. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली goes down the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

OMG, I forgot to tell you a story. It's a very interesting story. और उसके बाद प्रॉम्प्टली आप सो जाओ. अगर आप नए नए एक क्रशिंग रिलेशनशिप में हो और आप दोनों आजकल रात को एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हो, देन दिस इज अ परफेक्ट टेक्स्ट टू सेंड. अगर आप चाहते हो कि सुबह उठते तक आपके पास कम से कम 15 टेक्स्ट हो कि यार वो क्या स्टोरी थी, तू बताने वाली थी और उसके बाद तो सो गई, हाउ कुड यू डू दैट टू मी. दिस इज वन गुड नाइट टेक्स्ट दैट विल गारंटी कि वो बंदा या बंदी आपके बारे में सारी रात सोचेंगे. ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है एंड इट हैज वर्क्ड एवरी सिंगल टाइम successfully. इसे ट्राई करके देखो. आई एम सो श्योर दैट यू विल फॉल इन लव विद मी इवन मोर कि यार क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. एंड टू थैंक मी पर्सनली, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफ पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो ढूंढो ना मुझे. एंड वन थिंग दैट आई मस्ट से टू यू, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe aap. Ab bari hai hafte ke hottest pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. All this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki. Gaana number 10 par ek nayi entry hai. Gaane ka naam hai Chori. Mika Singh and Daya the rapper ka hai gaana. Uske baad Mitta Roar ka Shisha. Pichle hafte se 4 position niche drop hua hai. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन उन्हीं के लिरिक्स मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप।

गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए, उस पे गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये री रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Waste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आज एक कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनेक्ट, एंजॉय। नंबर 8।

0: Sana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello, Manoj ji se baat kar sakta hu main?
3: Haan ji, bol raha hu Manoj.
4: Haan, Manoj ji, main Yadavar bol raha hu. Oil se ye petrol ki problem aapko bhi ho rahi hai kya?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
4: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
4: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
4: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ, तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं, पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
4: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: ए पगला।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनेका। अभी के अभी जाओ @RJ कनेका ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s and 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 years, कंटेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कंटेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती हैं एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स उनके कॉमेंट्स में, अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। किरणों में

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आज हम इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक के बारे में जब बात करते हैं, पॉप स्टार्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय 90s एंड 2000s का इंडी पॉप। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स। आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है। नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक, इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो। हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात। कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है। आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस। प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करी है। द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस। आई रिमेम्बर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है। एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को वो बटरफ्लाइज आती हैं। समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना। हमने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिकॉन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माई साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन है आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो व्हिच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दया द रैपर का छोरी अनया नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टी रोर का शीशा.
2: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर.
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौबर जोगी डब दबी ना.
0: डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
5: मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मतलब मेरे पास जो लव्स हैं वो इनकी शख्सियत इनकी अचीवमेंट्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कुदरत का करिश्मा जब 5-6 साल का था तभी से फिल्मों में काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर बड़े होकर किस उम्र में इन्होंने फिल्मों में फुल टाइम काम करना शुरू किया, किस तरह रोल्स से इनकी शुरुआत हुई, साउथ में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म्स में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 19 was when I got acting breaks again. I played small roles, villains, comedians, and then comedy. And then from comedy, it became the loser who always let his jaw drop. And the girl said, "Oh, you're like a brother to me." That happened for some time, and then suddenly they thought was a good combi. Suddenly, I realized Kerala made me a lead role player. By the time I was getting my foot into the Tamil industry, I became a star in Kerala. I think it was 1975-76.
0: तो मतलब जब हिंदी सिनेमा में इनका डेब्यू हुआ 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म से, तब तक वो साउथ में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, तो एक दूजे के लिए बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म होगी, बट ओवरऑल उनकी ये 101st फिल्म थी। एक दूजे के लिए का वासु, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर्स प्लेड बाय दिस फिनोमिनल एक्टर। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का।
3: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
4: है सर। आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
3: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया।
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे।
3: बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो।
4: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने।
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर। सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था।
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या।
4: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है विपिन।
4: नहीं सर सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल के दिमाग खराब है क्या तेरा पैसे देने पड़ेंगे पैसे
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है।
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे।
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं।
5: हाँ जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया।
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा नाम अगर किसी को मिला हो उनके बारे में मैं करूं बात, मेरी क्या औकात। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूं चारू आपके साथ, कमल हसन साहब। आपको पता है हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म और अदरवाइज उनकी 101st फिल्म एक दूजे के लिए जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने रिजेक्ट कर दी या वो नहीं कर पाए। एक बार मनमोहन देसाई साहब भी उनके पास गए थे एक फिल्म लेकर। सुनिए इस इंसिडेंट के बारे में, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मनमोहन देसाई साहब वाज वेरी अपसेट व्हेन आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्क्रिप्ट। आई थिंक इट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड अल्लाह रखा। आई कुड ओनली अपोलोजाइज बिकॉज़ आई डिडंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट, बट देन ही सेड इवन मिस्टर अमिताभ डजंट आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट। माय आंसर वाज दैट प्रोबब्ली इट साउंडेड कॉकी टू हिम, आई सेड ही कैन अफोर्ड नॉट टू आस्क फॉर इट। And I was so excited with him coming that I didn't even offer them tea. So first, this guy doesn't offer me tea, then he asks for script. So there's so many things which went against me. I must have missed many opportunities.
0: पर हिंदी फिल्मों में कमल हसन साहब ने चाहे लिमिटेड काम किया हो लेकिन उनके काम की एक अलग ही लीग है। आप सिर्फ 80s की फिल्में उठा लीजिए, एक दूजे के लिए, सागर, सदमा एंड सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम में एक एक सीन में क्या ब्रिलियंट है ये बंदा। इनफैक्ट एक वेडिंग सीन में जो उनका डांस है ना, मुझे लगता है वो डांस ही पूरा का पूरा पैसा वसूल है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: सारी दुनिया की फिल्मों के सैड क्लाइमेक्स सीन्स एक तरफ और सदमा का सैड क्लाइमेक्स सीन एक तरफा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उस एक्टर के आगे मैं सर झुकाऊं, धोक दूं, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर कमल हसन साहब। पर आपको पता है, इसी सैड एंडिंग की वजह से सदमा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम कमल हसन साहब ने जो हिंदी फिल्में की थी एक दूजे के लिए या सनम तेरी कसम, जिसमें उन्होंने बहुत ब्रिलियंट उछल कूद मचाई थी, उसके बाद इस तरह के रोल में पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: See, the thing is, they complained about Sadma. Sadma's a good film. It's still widely appreciated. But what happened with that film was they were looking for the ek duje ke liye boy. But the boy was already a man. He had 100 films behind him. The image, the fixation they have about this boy. It's like the Hindi cinema was shocked. Are we came to see a dance. We thought he'll do some dance somewhere. And now he does a monkey trick in the end. Yeah, it's very sad. It's a good film. But what about the dance?
0: वैसे सदमा में भी इन्होंने डांस किया था, जो तब शायद पब्लिक को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब अगर आप उसे इस फिल्म में देखें तो बहुत ही अडोरेबल लगेगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: द फिनोमेना कॉल्ड कमल हसन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई 80s में जब हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ, साउथ में तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों में भी फिर सेंसेशन बन गए। तो सागर फिल्म वो सपोज टू बी डिम्पल कपाड़िया कमबैक फिल्म, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी, लेकिन सारी तारीफें ले गए कमल हसन साहब अपने इस रोल के बारे में। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई थॉट इट वाज अ ग्रेट रोल सिंस आई वाज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट एंड दो आई वाज बिजी When I'm there, I didn't have any other work. So I was there on the set improvising. Even when Chintu was there, I used to rehearse while some other scene was going on. I was enjoying myself.
0: लेकिन 80s में ये चंद फिल्में करने के बाद वो हिंदी फिल्मों से थोड़े दूर क्यों हो गए?
1: The only reason is that I have this addiction to completing projects and going on to the next. But by the time you finish a project in Hindi, it's 1.5 years. You lose touch. The clothes you're wearing has gone out of fashion. You reshoot. You've gone fatter, slimmer, or sicker, wiser, whatever. So many things happen in the meanwhile. So you miss out on the point. So it's tedious and frightening.
0: मतलब बॉलीवुड की लेट लतीफी और ढीलापन कमल हसन साहब को सूट नहीं करी, बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी उनकी कोई भी फिल्म आज हम डब्ड वर्जन में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेजर ऑफ इंडियन सिनेमा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ऐसा मैंने सुना है कि फिरोज खान साहब इतने शरारती थे, पता है कितने शरारती थे, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इतने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं था, तो हर स्कूल से उनको ऐसे टाटा बाय बाय नमस्ते कर दिया जाता था कि आप प्लीज स्कूल बदल लें। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चूंकि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा क्लास में एक दो तीन रहता था, तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं। और

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3535/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे, वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना। बोला नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी, जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey!

0: दिल में।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: पुरानी चीज़ विद चारू।

0: नूरी फिल्म का गाना। बहुत से लोगों को लगता है कि नूरी फिल्म पूनम ढिल्लों की पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, एज लीड मेन एक्ट्रेस पहली फिल्म थी 1979 की, लेकिन एक्चुअली उनकी पहली फिल्म 1978 की त्रिशूल थी। और इस फिल्म में जब यश चोपड़ा साहब ने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को बोला तो क्या था उनका रिएक्शन, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नेक्स्ट थिंग वाज यश जी सेड हम वो ओबरा होटल के स्विमिंग पूल में करने वाले हैं एंड सम बिकिनी दे बॉट फॉर मी। आई सेड आई एम नॉट गोना वेयर दैट। सो आई सेड बिकॉज़ आई हैव बीन स्विमिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन अ स्विमर अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। फॉर मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, इट्सी बिट्सी वाजंट कंफर्टेबल। सो आई सेड आई विल वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई एम कंफर्टेबल विद शॉर्ट्स बिकॉज़ I used to do gymnastics in school and I was a sports person, but to suddenly wear this little thingy. So finally after much back and forth they got me, I remember, one full piece, one green color one, and then some shorts wali shorts and then something.
0: Well, ye gana tha gapuchi gapuchi gum gum, nursery rhyme sound karta hai. Sun lete hain purani jeans par, main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

1978 की फिल्म डॉन की शूटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत हुई थी ये मेरा दिल यार का दीवाना इस गाने की शूट से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और शुरुआत में ही डायरेक्टर चंद्र बरोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में एक छोटा सा झगड़ा, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। डायरेक्टर चाहते थे कि इस गाने की वीडियो में हेलन जी अल्कोहल की एक बोतल पकड़ें, जबकि कोरियोग्राफर इसके खिलाफ थे। तो डिसाइड ये हुआ कि इस गाने के दो वर्जन्स शूट हुए, एक जिसमें उनके हाथ में बोतल थी, एक जिसमें नहीं थी। ये दोनों वर्जन्स बाद में देखे गए और कोरियोग्राफर फाइनली अग्रीड टू डायरेक्टर्स विजन एंड वर्जन। तो अब अगर हम ये गाना देखते हैं, उसमें हेलन जी के हाथ में अल्कोहल की बोतल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और हम समा बांधते हैं यहाँ पर थोड़े और म्यूजिक के साथ।

0: पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 80s 90s में एक टेलीविजन एड आती थी अंडों के ऊपर,
1: मेरे जान मुर्गी के अंडे, ना ना ना ना ना।
0: संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस एड की जो जिंगल की जो ट्यून थी ना, वो एक बहुत पुराने गाने से ली गई थी। इसे कंपोज किया था सी रामचंद्र ने, लिखा था पीएल संतोषी ने, जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के फादर थे। गाया था खुद कंपोजर सी रामचंद्र ने, साथ में गीता दत्त, शमशाद बेगम, मीना कपूर की आवाज। ये वाला गाना सॉरी फॉर द पुअर ऑडियो क्वालिटी, लेकिन ये 1947 की फिल्म शहनाई का गाना है, और उस टाइम ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी लोगों के दिलों में, और इस गाने में ब्रिटिश कल्चर का सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया है। इसलिए क्या क्या अतरंगी नगीने छुपे हैं पुराने गानों में भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: चलो
1: भाई, बड़ा पेशेंस और बड़ा वक्त था पुराने लोगों के पास। यूं ही नहीं कल्ट फिल्में बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu. Only on

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल, इतनी पसंद आई मैं मदन साहब के घर गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabala, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, my bank support.
3: Ah, bolia?
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
4: बात है सर, आप तो सॉरी पूरा बता दिए.
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो,
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल
4: पागल है, अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो,
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है, दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ लंबी नहीं, एक पीसफुल और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए इमोशनल बैलेंस कितना जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने जो कहा ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है क्योंकि हम फियर में रहते हैं, तो ज्यादातर जो माहौल होता है वो होता है कि तारीखों में व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं मगर अतीत हो रहे हैं, तो हर पल यही होता है कि एज एवरी सेकंड पासेस हम थोड़े थोड़े ओल्ड हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वर्जन लाइक दिस जहां पे हम अपने आप को हमेशा कहें कि यार हम पुराने हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हाउ टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट।
4: किसी ने कई बार बहुत सुंदर कहते हैं ना, इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स हाउ वेल यू लिव।
3: बिल्कुल।
4: सो व्हिच मींस ऐसा नहीं है, इवन इफ यू लिव लॉन्ग इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट वो जरूरी होता है कि आप जिए तो बहुत लंबा, पर आप भय में जिए, बहुत फियर में, बहुत चिंता में, उदासी में, डिप्रेस्ड, तो भी तो कोई फायदा नहीं है। एंड इवन इफ यू डिडंट लिव फॉर टू लॉन्ग बट यू लिव्ड हैप्पीली एंड यू गेव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू अदर पीपल, आपने इवन इफ यू डिडंट डू एनीथिंग ग्रेट, यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ बहुत ही महान किया है, लेकिन आप ऐसे थे कि जहां गए आपने खुशी बिखेरी, आपने सबकी दुआएं कमाई, आई थिंक दैट्स अ लाइफ लिव्ड वेल।
3: बिल्कुल, आनंद में राज खन्ना कहते हैं काका के भाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
4: हाँ।
3: और बहुत खूबसूरत बात कही आपने इसका उन्होंने, और अगर इसका सही मायने हम समझ लें तो वो वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने खुशियां बटोरी की नहीं, वर यू एबल टू मेक अ डिफरेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बढ़ती एज के साथ इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों बन जाती है, आइए इसे समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो फिजिकल डिपेंडेंसी कभी कभी हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, हाँ। हो जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता है। मेंटली कभी कभी आपकी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। और उससे क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के पास, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, धीरे धीरे ना उसका एक ऐसा महसूस होने लगता है कि वो कम हो रहा है, क्योंकि आप सडनली लोगों पे डिपेंडेंट हैं। और जब आप लंबे समय तक लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता, अब मुझे वही करना पड़ता जो मुझे लोग कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, ऐसा खाओ, इस समय वॉशरूम भी इसी समय जाओ। उस केस में अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें?
4: सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ और बॉडी भी अलग है। मेरा शरीर बीमार है,
3: मैं बीमार नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात।
4: लेकिन अगर आप बार बार ये कहते रहेंगे कि अब तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, मैं को इनके अनुसार चलना पड़ता है, सो यू गेटिंग इन टू अ विक्टिम मोड ना, मैं बेचारा। आप अपने को ये भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि है, अरे मेरे पास कोई है तो मेरी देखभाल करने वाला, मेरे को सपोर्ट करने वाला, कितने ऑक्यूपाइड होते हुए भी मेरे खाने का ध्यान रखते हैं, मेरे घूमने का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा तो मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी समझो बच्चे ही हैं,
3: हाँ।
4: और अगर वो वर्किंग है, सो इफ यू सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, तो इतना इजी भी नहीं होगा शायद। उनको जब टाइम होगा तो ही वो वॉक पे ले जा सकते होंगे, उनको जब टाइम होता होगा तो ही वो सोचते होंगे जब हम खाते हैं आप हमारे साथ ही खा लें। सो मैं समझ रही हूँ कि कुछ आपके बंधन होते होंगे, बट देन देयर इज अ फ्लिप साइड ऑल्सो, माने आप चाहें तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, आपकी सोच आपको दुख दे रही है, आपकी सोच आपको दुख दे रही है, और आप चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि आज मेरे आसपास कोई है तो मेरी देखभाल करने वाला, मुझे पूछने वाला, मुझे खिलाने वाला। आई थिंक ये भी एक हमारी जिम्मेवारी होती है कि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट है, समझो कोई हमें हमारी केयर कर रहा है, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी समबडी लाइक अ वार्ड बॉय ऑल्सो, कोई भी हो सकता है,
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जो हमारी केयर कर रहा है वो तो सब कुछ करेगा ही। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम भले फिजिकली डिपेंडेंट है लेकिन इमोशनली अगर स्ट्रांग है, हम इमोशनली हंसते हैं, खुश रहते हैं, उससे दो अच्छी बातें करते हैं, उसका भी उमंग बढ़ाते हैं, उसको भी दुआएं देते हैं, तो उसको हमारी सेवा करते हुए ये नहीं लगता कि उसको कुछ करना पड़ रहा है। इनफैक्ट उसको लगता है ये तो मेरा भाग्य है, ये तो मेरा भाग्य है। यू नो व्हेन वी सॉ आवर एल्डर्स ग्रोइंग ओल्ड इन द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम दादी जी कहते हैं, एल्डर सिस्टर्स, दे वर वेरी वेरी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, तो फिर वो भी धीरे धीरे जब बुजुर्ग हुए तो उनको भी किसी की हेल्प लगती थी, सब वेट करते थे कि मेरे को चांस मिल जाए आज इनको वॉक पे ले जाने के लिए, आज इनके साथ कार पे इनको आज हॉस्पिटल हम ले जाएं, आज इनको डॉक्टर के पास हम ले जाएं, तो हमें 5 मिनट इनके साथ बात करने को मिले।
3: बहुत खूबसूरत, क्या बात।
4: शायद कोई ऐसी बात हम कर लें जो, एंड वो एक एक ट्रिप जो कोई जाता था ना, आज भी हम किसी को मिलेंगे कहेंगे हम एक बार उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी, आज तक मुझे वो बात याद है। तो अभी क्या हुआ, आपने थोड़ी ना उनको हेल्प करी, इनफैक्ट आपका तो भाग्य बन गया। सो एनीबडी जो आपको लगता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति को ऐसा फील हो कि ये मेरा फॉर्च्यून है जो मुझे इनकी सेवा करने का चांस मिला।
3: बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
4: इवन आई रिमेम्बर विद रतन टाटा, द बॉय हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, द यंग बॉय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम।
3: आप शांतनु नायडू की बात कर रही हैं।
4: वेरी नाइस, एंड ही शेयर्ड इन हिज बुक दैट यू नो ही बिकेम द लाइट हाउस फॉर मी। जो रतन टाटा जी थे, लास्ट में उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, एंड ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, बट उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि उस मोमेंट्स में जो उसने सीखा, दैट गेव हिम द लाइट एंड माइट एंड यू नो सम काइंड ऑफ दिशा की दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है।
3: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन।

से डगर डगर वन उपवन छाया है।

या शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने बुजुर्गों की केयर करते वक्त खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड रखना जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक सवाल आता है कि कई बार क्या होता है ऐसे लोगों के लिए, लोग कहते हैं कि यार तुम पहली बार मिले हो ना, एक बार मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आई हैव गॉन टू अ फ्यू फ्रेंड्स जिनके लेट्स से मम्मी या पापा हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं और बोलते हैं तुम और आया करो, तुमसे टाइम स्पेंड करें, बड़ा मजा आता है। आज जब उनके बच्चों से मैं बात करता हूं, बोलते हैं यार तुम तो एक ही बार मिल रहे हो ना, हमें रोज रहना पड़ता है, रोज रहो तो पता चलेगा। और देयरफॉर द सिचुएशन इज ऑलवेज डिफरेंट जब आप एक बार मिलते हैं और रोज केयर करना पड़ता है, क्योंकि जो रोज केयर करते हैं ना, शायद उनमें कुछ बाती हो जाती है, अनबन हो जाती है, सेवा कर रहे हैं, भाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है खिटपिट, तो क्या करें ऐसे में।
4: सेवा करना माना देना, देने वाला भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए जब हम एक बार ही किसी के लिए करने के लिए जाते हैं, हम उस दिन अच्छे मूड में होते हैं, हमारा उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास कोई पकड़ी हुई बातें नहीं होती, कोई हर्ट नहीं होता, सो इट इज ऑब्वियसली इजी। जो हमारे से एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो बहुत प्योर होती है, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। रोज में काफी कुछ हुआ होता है, आपको अपने को एम्पावर करना पड़ता है, लेट को करना पड़ता है, सी रोल रिवर्सल हो जाते हैं। आप भी तो एक दिन बच्चे थे, एक बात को 10 बार पूछते थे, वो 10 बार आपको एक ही बात समझाते थे, प्यार से समझाते थे, नहीं प्यार से समझाया तो वो राइट पेरेंटिंग नहीं थी। आखिर तो पेरेंटिंग यही होती है ना कि बच्चा एक ही चीज 10 बार पूछता है, तो पेरेंट क्या करता है, एक ही चीज 10 बार बताता है
3: प्यार से।
4: आज जब कोई बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो बच्चे जैसे बन जाते हैं, वो एक ही चीज 10 बार पूछते हैं, उस समय पर आपको अपने को याद दिलाना पड़ता है कि ये लास्ट के जो उनके 5-10 ईयर्स है, ये रोल रिवर्सल है, और मेरे को ये जो सस्टेनेंस है बहुत प्यार से, इसमें बहुत पेशेंस लगता है, बहुत प्यार से और पेशेंस से करनी है। आई टेल यू, अगर हम नहीं करेंगे ना तो फिर रिग्रेट रह जाएगा।
3: ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि ये याद रखना कि बड़े प्यार से उन्होंने 10 सवालों को जवाब दिया था, चाहे आपने 100 बार पूछा हो, और जब आप वो आज वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत एक 2 लाइनें हैं। वो कहते हैं कि नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से चलना, नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से चलना, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पनाह मांगी थी। तो बहुत प्यारी लाइन है, शायद ये कहीं ना कहीं कह जाती है कि ये विधि का विधान है कि आप भी, हम सब भी एट सम डे सम पॉइंट इन टाइम बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और जिनको हमने बड़ा किया वो इसलिए कहते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो बहुत खूबसूरत लाइन इसमें कही गई है कि रोल रिवर्सल तो होगा, और अगर हमने पुण्य अच्छा किया है और वैल्यूज अच्छे दिए हैं तो शायद हमारे काम आएगा वो।
4: हम भी एक दिन बूढ़े होंगे।
3: बिल्कुल।
4: देखो, कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए, क्योंकि लॉ भी तो है ना, जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य। आज ऐसा नहीं है, हम अगर किसी बुजुर्ग को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे एक दिन। यू नो, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज हम थोड़े से खाली हैं। जैसे भी बच्चे भी हैं, समझो काम पर जाते हैं, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, जेलसी है, एंगर है, आपको इतना डिप्लीट कर देता है कि उसके बाद कितनी ही आपके पास कोई सोल में ताकत रहती है देने की।
3: बिल्कुल सही।
4: पार्टनर को देने की नहीं रहती, बच्चे को देने की नहीं रहती, तो पेरेंट तो फिर और नेक्स्ट हो जाता है, देने का ही कुछ नहीं रहता। तो जब तक अपने को भरेंगे नहीं तो देंगे क्या, और वो पेरेंट कई बार सारा दिन इंतजार कर रहा होता है कि आप आएंगे और 5 मिनट उनके साथ बैठेंगे।
3: बिल्कुल।
4: आज उनकी फिजिकली संभाल तो एक वार्ड बॉय भी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे से, अपने परिवार से तो उनको प्यार चाहिए ना, एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। कभी कभी वो ही कोई एक ऐसी लाइन कह के चले जाते हैं सुबह या रात में
3: जो पूरा दिन निकाल देता हूँ,
4: पूरा दिन उनको चुभ जाती है।
3: मुझे याद है बीच में मैं रेकी सीख रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था, तो मैं बोलता मैं इसकी भी हीलिंग करूँ, मैं उसकी भी हीलिंग करूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम सबकी हीलिंग करना चाहते हो, लेकिन हील करने से पहले तुम में एनर्जी का यू नो ये डिप्लीट हो रहा है, इसको रिप्लीट करना बहुत जरूरी। जब तक ये एनर्जी आएगी नहीं तुम दोगे कहाँ से।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशनल हीलिंग की शुरुआत खुद को समझने और एक्सेप्ट करने से कैसे होती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: धीरे धीरे क्या होता है, चाहे पार्टनर हो, बच्चा हो, ऑफिस हो, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही होती है। तो शाम तक जब हम आते हैं, शायद अपने खुद के पेरेंट को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसको कैसे भरें?
4: अभी इस बार यूएन में योगा डे का प्रोग्राम था, तो उसमें हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टर जयंती थे जो शेयर कर रहे थे, एंड देन शी सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। शी सेड आप सभी दादी जानकी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उन्होंने 104 इयर्स तक सर्व किया।
3: अच्छा।
4: एंड शी सेड दादी जी यूज्ड टू ऑलवेज से कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, एंड इट डजंट गो विद हर ना, बिकॉज उनके दिन में से 24 में से 18 घंटे तो देने में जाते थे। दे रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को, साथ कॉन्फ्रेंसेस में है, थ्रू द डे शी वॉज मीटिंग पीपल। तो सेल्फिश क्यों है? तो उसने कहा, मैं अपना कुछ नहीं देती।
3: अच्छा।
4: मैं अपना कुछ नहीं देती, आई एम जस्ट अ मीडियम ऑफ गॉड, आई एम जस्ट अ चैनल। मैं उससे लेती हूँ और देती हूँ, इसलिए कभी फटीक, बर्न आउट, कंपैशन फटीक, ये सब अक्षर मुझे समझ में नहीं आते। ये तब होता है जब आप अपने से दे रहे हैं। तो हर सोल की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे, कहीं ना कहीं आप डिप्लीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब बुजुर्गों की बातें रेपिटेटिव लगने लगे तब उन्हें पेशेंस और एम्पैथी के साथ कैसे समझें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो हाल फिलहाल में सिस्टर श्रेया, मैं किसी से मिला था और वो कह रहे थे कि यार बहुत बोर करते हैं, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है और उनके साथ जो गुजरा है।
4: कौन बोर करते हैं? पेरेंट्स,
3: मतलब कोई भी बुजुर्ग हैं,
4: बुजुर्ग
3: उनके साथ जो बैठते हैं, वो यार वो पुराने दिन के, हमारे जमाने में हम 1 रुपए में सामान ले आते थे वगैरह वगैरह, वही स्टोरी मैं 100 बार नहीं सुन सकता। तो कभी कभी जो यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन के साथ इसलिए भी नहीं टाइम स्पेंड करना चाहती, क्योंकि इमोशनल हीलिंग तो ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंसी भी ठीक है, लेकिन आप बोलते यार मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, बियॉन्ड अ पॉइंट है, मेरे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। वो तो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, और मेरे पास बियॉन्ड जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि मैं स्टोरी 100 बार सुन चुका हूँ, कितनी बार उनको बोलूँ कि सुन चुका हूँ फिर से मत सुनाइए, तो इसका क्या करें?
4: दो बातें हैं। पहला, जैसे हमने कहा कि वो जो बुजुर्ग है अगर वो भी सिर्फ इतना ही करता है कि खुश रहता है, उनके बारे में पूछता है, उनकी स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, उनके जीवन में इंटरेस्ट लेता है, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको एम्पावर करता है, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको भाग्य महसूस होगा। जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप ऐसे बने कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना
3: चाहे।
4: सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर पाते, कोई एक ऐसा पेरेंट है, कोई ऐसा बुजुर्ग है जो इमोशनली वीक है, आपको लगता है कि अब इस पॉइंट पर आकर के वो चेंज नहीं हो सकते, इट इज ओके। कंपैशनेट लिसनिंग बहुत जरूरी है। कंपैशनेट लिसनिंग एक पार्ट होता है पर्सनालिटी का, कि केवल बैठ करके सुनना और इरिटेट नहीं होना, अपसेट नहीं होना, और रहम के भाव से सुनना सेवा है। आप इसको सेवा समझे, आप इसको ये नहीं समझे कि मजबूरी है, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। कई चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके पेरेंट है और ये आपकी उनके प्रति सेवा है। आप सेवा समझ करके करेंगे, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी दुनिया में इतने लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उस बुजुर्ग से, वो वॉलंटियर कर रहे हैं। अभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यंग बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं, हम 2 घंटा आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम कार्ड्स खेलेंगे, हम आपको वॉक पर ले जाएंगे। कई बच्चे वॉलंटियर करते हैं, हम रोज आएंगे, आप लिस्ट बना के रखना, आपको कुछ चाहिए तो, मेडिसिन चाहिए, सामान चाहिए, हम आपको दे करके जाएंगे। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो भी तो वही है ना, लेकिन उनके अंदर वो भाव है कि ये डिपेंडेंट है, हम यंग है, हम सेवा कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हम घर के फैमिली मेंबर्स तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ वन थॉट, ये सेवा है।
3: वही बात है ना कि एक बार करना पड़ता है उनको जो वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन
4: नहीं, वॉलंटियर्स तो रोज करते हैं और सेल्फलेसली करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9080220002 और विजिट aimseducation.edu।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज के बीच में प्रेजेंट में जीना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद बीते हुए उम्र की बहुत याद आती है, अफसोस ये है कि वो उम्र उम्र भर वह नहीं लौटती। और इस लूप में रहने से बजाय ये इम्पोर्टेंट है कि आप आसपास थोड़ी खुशी खोजें।
4: आई थिंक कभी कभी ये ऐसा तब भी होता है इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग आपका आज,
3: हाँ प्रेजेंट मोमेंट।
4: हाँ मतलब कभी ज्यादातर हम पास्ट में क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं और आप बेटर बन रहे हैं, व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक, टेल मी। यू नो हम कितने इमेच्योर होते हैं, फिर हम मेच्योर होते हैं, हमारी टॉलरेंस बढ़ती है, हमारी पावर टू मतलब कितनी सारी पावर्स टू एक्सेप्ट लेट गो बढ़ती हैं, यू बिकम अ बेटर पर्सन। व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक टू समबडी हु वाज चाइल्डिश और वाज मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आप हर दिन लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और बेटर हो रहे हैं तो आप वापस नहीं जाना चाहते, बिकॉज यू आर मोर कम्फर्टेबल विद हु यू आर टूडे। लेकिन अगर आप नहीं इवॉल्व हो रहे तो फिर आप वो कॉलेज डेज और स्कूल डेज और पास्ट में जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पास्ट ही अच्छा था
3: ये जरूरी नहीं है।
4: नहीं नहीं, और आज बस दुखी है और गम में है वो ठीक नहीं,
3: ऐसा नहीं है,
4: वो ठीक नहीं।
3: हाँ वो तब तो फिर वही वाली बात होगी ना, देनवीर मुकेश साहब का बहुत प्यारा गाना था कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो वो जरूरी नहीं है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं और उसके तरीके भी होते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: No!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर लें।
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इमोशनल डिपेंडेंसी कब तक हेल्दी होती है और कब वो हमारी पीस को अफेक्ट करने लगती है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जो हमने शुरू में बात की थी, कभी कभी ग्रोइंग ओल्ड कैन बी वेरी लोनली, कि क्योंकि आपके साथ जो पले बड़े थे वो शायद अब नहीं है, आप किसी जॉब में थे अब शायद वो नहीं है, तो उनके जो नाते हैं वो निकल गए, शायद आपका शहर चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो कभी कभी आपके आस पड़ोस वाले ही नहीं रहते। तो उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो जर्नलिंग करना हो, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो, चाहे वो एक नया स्पोर्ट ले लेना हो। और कई बार कहते हैं कि स्पोर्ट जरूरी नहीं कि आउटडोर स्पोर्ट हो, इट कैन बी एन इंडोर स्पोर्ट, इट कुड बी चेस, इट कुड बी क्रॉसवर्ड पजल्स। में कई लोगों को देखता हूँ सारा दिन मसरूफ रहते हैं उसमें और वो अपना टाइम बखूबी निकाल लेते हैं।
4: इमोशनल डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी है किसी चीज के ऊपर, चाहे वो व्यक्ति है, वो पोता है, वो दोता है, वो कोई भी है, डिपेंडेंसी तो है ना, हर्जा नहीं है। इट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, पर रॉन्ग कब हो जाता है कि जब वो चीज आपको नहीं मिल रही तो आप बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का आधार ले लेना, किसी का इतना ज्यादा आधार ले लेना कि वो चीज नहीं मिल रही तो वो आपको ऊपर नीचे कर रही है, आप हलचल में जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इमोशनल इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, इमोशनली।
3: बहुत खूबसूरत।
4: इंडिपेंडेंस की तो हम बात करते हैं, पर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो वो भी जैसे आपने कहा कि अपनी खुशी की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, यू नो वी हैव टू लर्न दिस। हमें लगता है कि हमें खुश करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, ये नहीं है। वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुशी की, कि हम अपने को कैसे खुश रखें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। बनीता पारिख जी अहमदाबाद से लिखती हैं कि मुझे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ट्रिगर जल्दी होती है और नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, क्या करूं?
2: एंगर इश्यूज क्या है? कोई भी चीज आप बार बार करते हैं तो बहुत नेचुरल नेचर हो जाती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, मना वो बहुत पहले आप बड़ी बात पे करते थे, फिर आप जैसी कोई चीज आप करते रहे। हमने वो एग्जांपल एक बार पहले भी लिया था कि जापान में एक बार रिसर्च हुई थी, तो एक कंपनी थी जहाँ पर उनको बहुत गुस्सा आता था जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि बेसमेंट में ऐसे पैडेड वॉल्स बनाई, वहां पर बेसबॉल बैट्स रखे और कहा कि किसी को भी गुस्सा आए तो कस्टमर पे नहीं निकालना, जो एम्प्लॉयज थे आप नीचे जाओ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, बैट से आप वॉल को हिट करो, फिर ऊपर आकर के कस्टमर को डील करो। एंड दे डिड दैट रिसर्च फॉर फ्यू मंथ्स। अब रिजल्ट में क्या आया, मतलब उसमें तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका गुस्सा बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा। तो जो रिजल्ट, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
1: मतलब होना चाहिए कि कम हो गया, क्योंकि उनको एक जरिया मिल गया निकालने के लिए, लेकिन आपने मुझे पहले बताया था इसके बारे में
2: जी,
1: उनका बढ़ गया क्योंकि वो आदत बन गई थी अब उनकी।
2: ये जो हमें लगता है ना कि निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन निकालने से खत्म नहीं होता, आपको वो चीज करने की आदत पड़ रही है। तो अगर आप गुस्सा बार बार करेंगे तो वो आदत पड़ती चली जाएंगी, और इसीलिए फिर छोटा ट्रिगर भी काफी होता है। पहले कोई बड़ी बात होती है तो आप करते हैं, लेकिन करते जाएंगे तो फिर छोटा सा ट्रिगर, छोटा ट्रिगर क्या होता है? आपने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं अंदर आया था, मैंने आपको नमस्ते किया, आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। उसको पता भी नहीं होगा, उनका इंटेंट भी नहीं होगा, लेकिन आपका मन कहेगा आपने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट। इसीलिए आप अभी शिफ्ट लाना पड़ेगा ना। एंगर से शिफ्ट होना क्या है कि अभी हम छोटे छोटे ट्रिगर में ट्राई करना शुरू करें। आज से अपने को बोलें कि अभी कोई बात होगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। आप अब 10 दिन, अगर 10 बार दिन में करते हैं, एक बार होगा, 9 बार नहीं होगा। बट वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। 9 बार आप रिएक्ट करेंगे, 1 बार आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है? किसी ने नहीं भी किया तो आपने न गलत सोचा। एंगर बिगिंस इन द माइंड। ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन मन में डिस्टर्ब होना, वहीं से एंगर शुरू हो जाता है। एंगर के बहुत रूप है। इरिटेट होना, रेज, रूठना, बात नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। हम टीम सारा काम कर रहे हैं, अब सडनली मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई जरूरी काम है, आप है कुछ नहीं, लेकिन आप सहयोग नहीं देना चाहते, विड्रॉ कर लेना, वो सब गुस्से का ही रूप है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि अंदर पे वो गुस्सा है। गुस्सा फिर नफरत में बदल जाता है, नफरत फिर रिवेंज में बदल जाती है। तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। दिन में 10 बार आता है, 1 बार भी नहीं आपने नहीं किया, पैट योर सेल्फ कि कम से कम 1 बार तो नहीं किया। जस्ट लाइक व्हेन यू लीव स्मोकिंग,
1: एक कम हुआ, बहुत अच्छी बात है।
2: धीरे धीरे धीरे धीरे,
1: फिर कल नहीं किया, अच्छा स्मॉल प्रोसेस।
2: फिर भी स्मोकिंग में शायद आप एक झटके से भी छोड़ पाएंगे। संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं होता,
1: समय लगेगा,
2: थोड़ा समय लगता है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है। कोई चीज प्रैक्टिस है तो डिफिकल्ट नहीं होती। ए लिखना है, ए लिखना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से वो चीज बहुत इजी हो जाती है। ऐसे गुस्सा छोड़ना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग नहीं करना है, इसका पूरा अंदर में डिटरमिन्ड थॉट होना चाहिए। सेकंड, अगले दिन से जब आप शुरू करेंगे, हो सकता है कि आप 10 बार में से 9 बार करें, 1 बार ना करें। ग्रेजुअली एक ऐसा दिन भी आएगा, 1 बार किया, 9 बार नहीं किया, हैव कंपैशन, हैव फेथ, बी डिटरमिन्ड, चला जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर कॉफी को गर्म करने से पहले हम थोड़ा सा एटीट्यूड देते हैं। अब देखो, इंडियन पेरेंट्स जो हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी दो तरह की वेदर अपडेट्स होती है। एक तो ये कि बेटा जैकेट पहन लो, और दूसरी होती है बेटा शादी का सीजन चल रहा है, तू कब करेगा शादी। और देसी एक्सपैट लाइफ जो होती है ना, वो फुल फिल्मी भी होती है। सुबह सुबह बेगल के साथ शुरुआत होती है, आफ्टरनून में थोड़ी सी दाल चावल की क्रेविंग होती है, और शाम आते आते फिर कॉफी शॉट्स का मन करता है। भाई देखो, अगर सुबह सुबह तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे बॉस तुमसे पूछ रहा है क्या हो गया, बिना वजह क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो बताना मत कि मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे थे, जहां पर प्रिसिला आती है, जो लेकर आती है ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा दिन सुपर ऑसम सुपर मिर्चीदार बन जाता है। अभी फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फटाफट से अपने मैसेजेस ड्रॉप करो, डू फॉलो मी देयर, एंड राइट नाउ बजाते तुम्हारे लिए कुछ मिर्ची दार बैंगर्स बैक टू बैक। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana. Gabana. Burga, Burga. La Virgua, la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
12: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
4: मिर्ची, फ्रेश माल।
17: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग ईस्ट कोस्ट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग। तो आज की तारीख यानी 22nd ऑफ मई, इस दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में? सबसे पहले रिवाइंड करते हैं ऑल द वे टू 1849। अब्राहम लिंकन गॉट पेटेंट फॉर अ बोट लिफ्टिंग डिवाइस। हाँ जी, यूएस प्रेसिडेंट भी और इन्वेंटर भी थे। देन 1960, चिले एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड, 9.5 मैग्नीट्यूड का। एंड गेमर्स पे अटेंशन, 1980 में पैकमैन वॉज रिलीज इन जापान, द ओनली येलो सर्कल दैट टॉट अस लाइफ का सबसे बड़ा लेसन। इंडिया में भी आज का दिन काफी हिस्टोरिक है। शेरशाह सूरी, द रूलर हु गेव अस द रुपया एंड हेल्प्ड बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, पास अवे इन 1545 आज के दिन। 1989 में इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च अग्नि मिसाइल फ्रॉम ओडिशा। ऑल्सो आज के दिन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो प्लीज आज उस एक पौधे को पानी जरूर डालना जो तुमने अपने अपार्टमेंट में रख रखा है। एंड फॉर ऑल माई मिस्ट्री लवर्स, आज के दिन है शर्लक होम्स डे टू, सो आज के दिन कोई केस वे सॉल्व कर देना। एंड इन केस यू आर वंडरिंग हु टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फटाफट से जाकर चेकआउट करो मेरा हैंडल, मिर्ची प्रिस इज द हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ये देसी अंकल्स की ना दो तरह की हॉबीज होती है, एक तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजना और दूसरा फेसबुक पर अजीब अजीब सी सेल्फियां डालना। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। सो लिसन टू दिस, बिग पी जो है हमारे, उन्होंने खुद से एक क्रिप्टिक पोस्ट ड्रॉप किया है ऑन ट्विटर। After reports of his hospital visit started circulating online, Mr. Bachchan ne likha hai, bokhla gaye hai log, vichar vyakt kiye. Meaning people got flustered and started expressing opinions. और इसके बाद इंटरनेट ने अपना सर खुजाया इतनी मेहनत मशक्कत की पता करने के लिए कि आखिर ये पोस्ट किस चीज के बारे में है। एंड देन बिग बी का माइक ड्रॉप जवाब आया, रिलैक्स गाइस। एंड देन केम द अमिताभ बच्चन लेवल का माइक ड्रॉप। वेदर पीपल अंडरस्टूड और नॉट, दे इवेंचुअली रिसीव्ड बैक व्हाट दे गेव। ये मिस्ट्री अभी तो सॉल्व नहीं हुई है, शायद इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। गेट इट्स। ऐसे ही पोर जोक्स के लिए तुम जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज एक्स। एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। टाइम फॉर सम मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab, mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, my sleepy desi people. उठ जाओ, अब वेदर का हाल चाल बताने का टाइम आ चुका है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. सो इफ यू प्लानिंग टू स्टेप आउट टुडे, आज बड़ा ही बॉलीवुडिश स्लो मोशन सेटअप मिलने वाला है तुमको. अभी फिलहाल टेम्परेचर है 56 डिग्री फारेनहाइट, इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में जिस तरह की बरसात हुई उससे ये होना तो बनता है. 3 मिलीमीटर्स की बरसात हमने देखी है पिछले 24 घंटों में, और अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू रेन लेस देन 1 मिलीमीटर्स. सो अपने अम्ब्रेलाज आज साथ में कैरी करना बिल्कुल मत भूलना. अब टेम्परेचर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. इट्स हैंगिंग बिटवीन 55 and 66 डिग्रीज फारेनहाइट, बट बिकॉज द विंड इज मेकिंग इट फील अ लिटिल बिट, इट्स गोइंग टू फील लाइक 48 to 62 डिग्रीज फारेनहाइट. लेकिन अराउंड नून वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी स्काइज, मतलब सन थोड़ा सा कैमियो अपीयरेंस देने वाला है बिफोर कम्प्लीटली डिसअपीयरिंग अगेन, जस्ट लाइक तुम्हारा वो सिचुएशनशिप जो चल रहा है. एंड फन फैक्ट ये है कि आज भी तुम्हें लेयर के प्लेयर बन के बाहर जाना है, अपने ऊपर SPF 50 वाला सनब्लॉक लगाना है और ढेर सारा पानी पीना है बिकॉज यू नीड दैट ग्लास स्किन. एंड नाउ स्टे काम, कैरी दैट जैकेट एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my desi people, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ड्रॉप्ड अ लाइन स्ट्रेट आउट ऑफ अ सिटकॉम। While talking about global tensions and possible travel plans, he joked that if he attends his son Donald Trump Jr.'s wedding in the Bahamas, he gets killed. And if he skips it, fake news kills him. Sir basically described every Indian wedding ka RSVP ever. Number two, skies over the Black Sea got seriously tense. The UK's Royal Air Force says Russian fighter jets came dangerously close to one of their surveillance aircraft during a mission last month. One jet reported flew within 6 meters. That is absolutely not social distancing. And finally, Mount Everest turned into peak hour traffic. A record 274 climbers reached the summit in one single day from the Nepali side. Videos now show huge queues near the top. Imagine climbing the tallest mountain on earth only to hear, "Excuse me, bhaiya, thoda side dena." मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स प्ले करती हूँ तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana, rabana, burka, burka,
1: la virtua la burka. Mirci, burka! Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: से बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my hard workers. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. एंड आज का इंटरनेट ड्रामा कम्स कर्टसी ऑफ एन Amazon जॉब पोस्टिंग इन हैदराबाद दैट पीपल आर सीरियसली साइड आइंग राइट नाउ. हुआ ये कि द जॉब इज फॉर एन ऑपरेशंस मैनेजर का रोल एंड इट रिपोर्टेडली मेंशन्ड स्टैंडिंग अप और वॉकिंग फॉर 12 आवर्स, लिफ्टिंग अप टू 22 किलोस एंड फ्रीक्वेंटली बेंडिंग एंड स्क्वाटिंग. मतलब ये जॉब था या क्रॉसफिट का सब्सक्रिप्शन? सोशल मीडिया इंस्टेंटली एक्सप्लोडेड विद वन यूजर जोकिंग, व्हाट डज अमेज़न थिंक इंडियंस आर, डोंकीज? उफ, इंटरनेट ने अगेन जीरो चिल दिखाया. देखो, ऑब्वियसली वेयरहाउस एंड ऑपरेशन जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड कैन बी फिजिकली डिमांडिंग, बट ऑनलाइन डिबेट इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस एंड बर्नआउट कल्चर, स्पेशली फॉर देसी वर्कर्स हु ऑलरेडी थिंक ओवर टाइम इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट. वैसे इसी से मुझे याद आया कि सो मेनी इमिग्रेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रेश इन अमेरिका, जॉब हंट कर रहे हैं एंड इट इटसेल्फ फील्स लाइक अ फुल टाइम जॉब. न्यू कंट्री है, नो यूएस एक्सपीरियंस है एंड लिंक्डइन पर जाओ तो ऐसा लगता है तुमने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है. विच इज वाई इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एक्सपीरियंस हियर इन द यूएस, चेक आउट एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज. A lot of their healthcare programs include clinical experience in hospitals and medical centers, and you only need a US equivalent high school graduation to apply. You can also call them at 908-222-0002. That's 908-222-0002. And also check out their website aimseducation.edu. That is aimseducation.edu. और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे कनेक्ट करो. मेरा हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: I don't need to tell you. New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
6: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
7: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
3: Say what?

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my birthday babies of 22nd of May. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बर्थडे के शाउट आउट का टाइम आ चुका है. सो इफ यू वर बॉर्न टुडे, आज कौन से सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले वी गॉट द टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच. Also celebrating today, supermodel Naomi Campbell. Actor Rajat Kapoor was also born today. And साथ में today marks the birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy. He is often called as the father of Indian Renaissance. The man challenged social evils and pushed for reforms way before raising awareness became a thing on Instagram. तो आज का birthday quote specially for you. Growing older is mandatory, लेकिन acting your age is absolutely not important. तो खाओ पियो ऐश करो, केक काटो, कैलोरीज की चिंता मत करो. मुझे अपने birthday shout outs भेजो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. और WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,600, $4,600 पर ट्रेंड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें। ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ। सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my Mirchi family. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी है अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है जानने का। सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्ड 4.5 आवर मीटिंग विद मिनिस्टर्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज 5 नेशन टूर। टॉपिक्स इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स लिंक्ड टू द मिडल ईस्ट सिचुएशन। रिपोर्ट से मिनिस्टर्स वर ऑल्सो आस्क्ड टू रैप अप पेंडिंग वर्क। नंबर टू पर यूके कोर्ट इज हियरिंग द केस ऑफ अ सिख मैन अक्यूज इन अ फेटल स्ट्रीट फाइट इंसिडेंट इन साउथहैम्पटन। The accused says he acted in self-defense and feared his kinpin would be used against him during the altercation. The matter is currently under legal review. It's definitely a reminder that situations can escalate quickly. And number three for cricket, say heartbreaking news for Chennai Super Kings fans. CSK are officially out of the IPL 2026 playoffs after a heavy loss against Gujarat Titans. GD put up 229 runs while CSK got bowled out for 140. 3 seasons without playoffs now, and somewhere every CSK fan is staring silently at the ceiling like it's Shah Rukh Khan's rain dance. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. Sun rahe the Mirchi Mornings. Mujhe ja kar dekh bhi lo. Insta aur X pe mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे. आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణ జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
14: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణ జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: माय फ्रेंड, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब रैप अप करने का टाइम आ चुका है। वी लाफ टुगेदर, वी गॉसिप टुगेदर, वी सर्वाइव्ड अनदर डे ऑफ ईमेल, स्टार्टिंग विद जस्ट सर्कलिंग बैक टू दिस। लेकिन जाने से पहले आज का फाइनल न्यूज नगेट तो तुम्हें देकर जाती हूँ। सो अपेरेंटली यूके'स किंग चार्ल्स वॉज ग्रीटिंग पीपल ड्यूरिंग अ पब्लिक विजिट व्हेन अ सीगल डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट इमोशनली फ्रॉम द स्काई। यू नो व्हाट आई मीन? Yup, bird poop landed on the back of his jacket. Honestly, the seagull woke up today and chose chaos. Lekin true royal style mein King Charles laughed it off and reportedly said, "At least it didn't land on my head." Well, sir, you handled it better than most of us handle one passive-aggressive office meeting. And of course, a lot of other things in your life. वैसे ये story proof है that no matter who you are, king हो, celebrity हो, आम आदमी हो या immigrant हो, life will eventually test your patience in public sometimes. Sometimes in the form of birds. And on that note, thank you so much for spending time with me today on Mirchi Mornings. You made the day feel happier. Abhi filhal main to apni coffee peene ja rahi hu. You have a great day and a great weekend. Milungi tumse same time, same place, same frequency, lekin kal nahi, Monday ko. Tab tak ke liye Priscilla ki taraf se tada bye bye. You can follow me Instagram or X par, mera handle name hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: फूड चॉइसेस के मामले में बचपन वाज वे मोर इजीयर यार।
1: सारा जमाना ऐसा रखा दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. You know, बचपन में बड़ा सिंपल हुआ करता था हमारा फंडा। भूख लगी है? मैगी खा लो। आजकल भूख लगती है ना तो 100 सवाल घूमते हैं दिमाग में। फ्राइड नहीं खा सकते, टू मच फैट नहीं खा सकते, ग्लूटेन अवॉइड करते हैं ना यार। उफ, एज अ किड लाइफ वॉज वे मोर सिंपल। एक दो चीजें पता थी हमें और वही खाते थे, और फिटनेस की पीपड़ी नहीं बजाते थे। वो कहते हैं ना, टू मच एनालिसिस कॉजेस पैरालिसिस। आजकल एक चीज खाने पर हमारे साथ यही होता है कि इतना ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं कि उसके बाद पैरालाइज हो जाते हैं कि यार अब तो नहीं हो रहा हमसे डिसाइड करना कि क्या खाना है, तुम ही ऑर्डर कर दो। और फिर फाइनली सब या तो पिज्जा ऑर्डर करते हैं या बिरयानी ऑर्डर करते हैं। बचपन सही था यार, सिंपल एंड सॉर्टेड। तो चलो फिर अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं 90 के दौर पर। मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pit Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Burga, burga. La viva la burga. Milchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
10: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस, Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
14: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। It's hot.

अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा,

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s के दौर की एक फिल्म थी टक्कर, जहाँ की स्टोरी लाइन बड़ी सही थी यार। एक करप्ट इंस्पेक्टर होता है जिसकी नजर हीरोइन पर पड़ती है। हीरोइन पर नजर पड़ते के साथ ही उसको पता लगता है कि हीरोइन की शादी हीरो से होने वाली है, और वो हीरो को एक गलत मामले के अंदर फॉल्सली फंसा फंसूकर जेल में डाल देता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हीरो हीरोइन की शादी होने वाली थी। तो जो हीरो हीरोइन की शादी होने वाली थी वो शादी रुक जाती है, क्योंकि इस इंस्पेक्टर की बुरी नजर हीरोइन के ऊपर होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हीरो जेल से बैठे बैठे लॉ की पढ़ाई करता है और अपना केस खुद लड़ता है। वाह यार, ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, है तो अपनी हिंदी फिल्म की स्टोरी।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जो स्टोरी की मैंने बात करी है, दैट स्टोरी इज फ्रॉम द फिल्म टक्कर, सोनाली बेंद्रे एंड सुनील शेट्टी की मूवी टक्कर, जिसका वो गाना था आंखों में बसे हो तुम। हाय, मैं तो बस सोनाली बेंद्रे के बाल ही देखती रह जाती थी यार। एनीवेज, गेटिंग बैक टू दिस मूवी, वेल ये जो फिल्म थी, इस फिल्म को बनते बनते 1.5 साल लग गया था, वो भी डिलेड फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे भरत रंगाचरे, उनकी तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो गई थी और इस जैसे शूट के अंदर डिले आ गया। तो जो 1994 में रिलीज होने वाली मूवी थी वो 1995 में रिलीज हुई। एंड एट द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ दिस फिल्म, सुनील शेट्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, तो वो इस फिल्म के प्रमोशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इस फिल्म को एज अ बैकलॉग वर्क काउंट कर रहे थे। लेकिन टू हिज सरप्राइज, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये बैकलॉग वाली टाइप नहीं थी यार। ये फिल्म बड़ी तारीफें बटोरने लग गई थी ऑडियंस के बीच में, इनफैक्ट क्रिटिक्स भी इस फिल्म की तारीफ कर रहे थे। एंड इवेंचुअली हुआ ये कि जिस फिल्म को उन्होंने प्रमोट नहीं किया था ये सोच के कि ये तो पुरानी पिक्चर है यार, कब की करके मैं भूल गया इस फिल्म को, वो फिल्म अच्छी चल गई, बजाय उस फिल्म के जो उनकी रीसेंट शूट थी और उसके प्रमोशन में उन्होंने फुल ऑन पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर सुनील शेट्टी की किस्मत नहीं, इस फिल्म की किस्मत की बात करेंगे, क्योंकि इस फिल्म की किस्मत में लिखा था कि ये हिट होनी है, तो हो गई। एंड सुनील शेट्टी, उन्होंने भी गलत गेज कर लिया इस फिल्म की सक्सेस को। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: है।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s की एक हिट फिल्म टक्कर। इस फिल्म में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे थे, लेकिन सोनाली बेंद्रे वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म। द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म वॉज पूजा भट्ट, लेकिन फिर फॉर सम रीजन उन्होंने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, पूजा भट्ट का ऑप्ट आउट करना सोनाली बेंद्रे के लिए एक गोल्डन चांस हो गया, बिकॉज ये फिल्म आगे जाकर काफी अच्छी खासी चली थी। और इस फिल्म का एक सीन है जो एक्चुअली शूट नहीं होना था, कहीं स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। लेकिन वो एक्सीडेंट भी इतना रियलिस्टिक रहा कि उस सीन को जैसा था वैसा ही ले लिया गया, विदाउट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि ये स्क्रिप्ट में तो था नहीं। सो बेसिकली, अगर आपने ये फिल्म देखी है या अगर कभी देखो तो नोटिस करना कि सुनील शेट्टी को जब जेल लेकर जाया जा रहा होता है तो होता क्या है कि एक पुलिस वाले की लाठी जो है वो उनकी नाक पे लग जाती है और उनका खून बहने लग जाता है। अब ये पुलिस ऑफिसर का रोल एक साइड आर्टिस्ट प्ले कर रहा था और गलती से ये डंडा सुनील शेट्टी की नाक पे लग गया था, जिसकी वजह से खून निकल के आ गया था। लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस सीन को तो इंक्लूड रखते ही रखते हैं, बिकॉज ये बड़ा रियलिस्टिक सा है यार, इस मोमेंट को हम जाने नहीं देंगे। तो भले से ही ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब ये गलती से शूट हो गया, कैमरे के ऊपर कैप्चर हो गया और जब ये निकल कर आए और देखा इसको, तो फिर उसको ऐड कर लिया गया। वैसे एक बात तो है, स्टिकिंग बाय द रूल्स ऑलवेज इज क्वाइट बोरिंग यार। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने टाइप होनी चाहिए यार पर्सनालिटी, तभी तो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, लाइफ में भी ऐसे ऐसे सीन्स निकल कर आते हैं जो बस स्पॉन्टेनियसली हमारी जिंदगी में निकल कर आते हैं और हमें जिंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 PM. Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. All this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki. Gaana number 10 par ek nayi entry hai. Gaane ka naam hai Chori. Mika Singh and Daya the rapper ka hai gaana. Uske baad Mitta Roar ka Shisha. Pichle hafte se 4 position niche drop hua hai. मिटर और की कॉम्पोजिशन उन्हीं के लिरिक्स मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए, उस पे गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने, आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Kya bana? Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
2: Hello. Hello.
3: Sir, very good evening. Thanks a lot.
2: हाँ बोलिए
3: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
3: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
8: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
9: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है.
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट विच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू। इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती हैं एंड हर फैंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के ड्रम्स बजा के सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है दैट शी वांट्स हर म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका विच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly believe that gaane share karne se pyar padta hai. Aaj hum independent pop music ke baare mein jab baat karte hain, pop stars ke baare mein baat karte hain. All of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s ka indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स। आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज

0: भी दिखता है. Needless to say that indie pop era was the golden era of pop music. इसीलिए it's time for what we call
1: Kanika's Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेम्बर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माई साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौर का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाने का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो विच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanega. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दया द रैपर का छोरी अनया नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरी आंखें पिछल के सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर.
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना.
0: डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
5: मन में सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

भाई हम लोग कसम तो ऐसे खाते हैं जैसे चने मूंगफलियां हो हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ कसम, मम्मी कसम, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो तेरी कसम, सामने वाले को ही खतरे में डाल देते हैं। तो देखो ऐसा है, जितनी कसम खानी है खाओ, कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो वैसे कसम से ये जो गाना सुना था ये भी बहुत बढ़िया था, और ये जो गाना सुनने वाले हैं ये भी बहुत बढ़िया है। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
4: हाँ जी हाँ जी।
5: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
4: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
5: होल्ड कर रहा हूँ।
4: हाँ जी हेलो।
5: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
4: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
5: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
4: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
5: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
4: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
5: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
4: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
5: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
4: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
5: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
4: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
5: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
4: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
5: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
4: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
5: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
4: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
5: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
4: क्या
5: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
6: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
4: नहीं,
5: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
10: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
8: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

उस्ताद गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अगर आपने संजू मूवी देखी है तो आपको पता है कि ये वाला गाना अमर प्रेम का उस्ताद गाना क्यों है। तो ऐसा सुनने में आता है कि आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा था एज एन एक्सप्रेशन उनके क्रिटिसिज्म को लेकर जो उनको मिलता था। भाई उस टाइम पे बहुत सारे जो लिरिसिस्ट थे, मोस्ट ऑफ द लिरिसिस्ट वो शायर थे, तो आनंद बख्शी साहब शायर नहीं थे, वो बस फिल्मी गाने लिखते थे। तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था कि जो ये लिखते हैं उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती है, ये शायरी नहीं होती है, इनकी तो तुकबंदी है, ये राइमिंग कर देते हैं। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म का ये सॉर्ट ऑफ जवाब था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं ये कहती हूँ कि बाकी के लिरिसिस्ट यस जो शायर थे उनका जवाब नहीं था, लेकिन बख्शी साहब भी लाजवाब थे। बख्शी साहब इन द हाउस, उनका एक और गाना सुनेंगे राइट हियर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only.

एक टाइम होता था जब ये सारे मौसम प्रॉपर होते थे, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी क्या हो गया है, हर कोई मौसम दूसरे मौसम में घुसा हुआ है। ये सावन बरसात तो कहीं भी घुस जाती है, किसी भी मौसम में बरसात हो जाती है, पतझड़ में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, कभी सर्दियों में गर्मी लगने लग जाती है, कभी गर्मियों में बरसात हो जाए तो ठंडी लगने लग जाती है। तो ऐसा सुनने पढ़ने में आता रहता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपना काम कर रही है धीरे धीरे, और हम बहुत तेज तेज अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ, पॉल्यूशन, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, धरती का बैलेंस हम बिगाड़ रहे हैं। तो जब हम बेईमानी कर रहे हैं तो मौसम भी तो बेवफाई कर सकता है ना। इसी ज्ञान के साथ वी टेक अ ब्रेक। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: Purani Jeans with Charu, only on

1965 की सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिलेगा ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म के सुपरहिट होने की मेन वजह थी इसका क्लाइमैक्स। तो इस फिल्म में शशि कपूर जी कश्मीर के एक बोटमैन बनते हैं और नंदा जी एक शहर की लड़की होती हैं रईस, जो कश्मीर घूमने आती हैं। दोनों में प्यार होता है, फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, एंड इवेंचुअली हीरोइन अपनी दौलत रुतबा ये सब फलाना ढिमका छोड़ के हीरो के साथ चले जाती है। सो डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने पहले ऐसा क्लाइमेक्स नहीं सोचा था। पहले ऐसा कुछ होता है कि शशि कपूर जी जब शहर आते हैं तो गुंडों को पीट पाट के वापस चले जाते हैं। बट देन डायरेक्टर साहब ने एक अमेरिकन फिल्म देखी, लव इन द आफ्टरनून, 1957 की ये फिल्म थी, जिसमें ऐसा कुछ क्लाइमेक्स होता है कि हीरो ट्रेन में जा रहा होता है, हीरोइन उसके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पे भाग रही होती है और हीरो उसको ट्रेन में खींच लेता है। बस यहीं से इस फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया। इसी तरह का क्लाइमेक्स है इसका। When you watch the film, this climax is so satisfying। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन

आपको पता है नीतू सिंह जब ऋषि कपूर से पहली बार मिली थी तो ऋषि कपूर उनको बहुत अनोइंग लगे थे। पिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बहुत शरारती थे फ्लैट। पिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बहुत शरारती थे फ्लैट। की दोस्ती प्यार में बदल गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Nafiyat wala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Hello, Manoj ji se baat kar sakta hu main?
3: Haan ji, bol raha hu Manoj.
4: Haan, Manoj ji, main Yadav bol raha hu. Oil se ye petrol ki problem aapko bhi ho rahi hai kya?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी एक महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये एक महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा,
4: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ, कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा,
4: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
4: हाँ, खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार, पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ, तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा और क्या करें यार,
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं, पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
4: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार, जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.

मैं ना कहीं पे पढ़ रही थी कि बॉबी फिल्म के दो क्लाइमेक्स शूट किए गए थे, एक सैड वन एक हैप्पी वन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राज कपूर साहब अक्सर ऐसा करते थे कि फिल्मों के दो क्लाइमेक्स शूट कर लेते थे और फिर अपने दोस्तों भाई बंधुओं को फिल्म दिखाते थे, जो पब्लिक की राय होती थी कि कौन सा क्लाइमेक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है वो क्लाइमेक्स रखते थे। एंड इसीलिए बॉबी फिल्म में हैप्पी वाला एंडिंग रखा गया था। वैसे मुझे समझ नहीं आता लव स्टोरीज में लवर्स को मारना क्यों है यार। पहले के जमाने में होता था लैला मजनू हीर रांझा, मारना क्यों है, सैड क्यों करना है पब्लिक को। पर लेकिन अगर आप सोचें, भारत देश में ही देखें, कई स्टेट्स में हम ऑनर किलिंग का नाम सुनते हैं कि दो लवर्स अगर सेम गोत्र सेम कास्ट सेम रिलीजन के नहीं है तो उनको मार दिया जाता है। दैट इज द सैड ट्रूथ। खैर, लेट्स होप रियलिटी में भी और फिल्मों में भी हमें हैप्पी एंडिंग्स मिले। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3333.

ग्रोइंग अप इयर्स में जब हम रीमिक्स सॉन्ग सुनते थे तो हमको लगता था ना कि ये ओरिजिनल ही है गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब ऐसा लगता था ओरिजिनल गाना है, उसमें इस तरह की बीट्स डाल दी गई हैं। फिर बाद में जाके पता चलता था कि ये तो कोई पुराना गाना था भाई। जैसे कि एक वो आया था, कलियों का चमन तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है। फिर आई थिंक एक और, हाउ टू फॉरगेट दिस वन, कांटा लगा। So, कांटा लगा इज ओरिजिनली फ्रॉम 1972 की फिल्म समाधि। इस गाने को कंपोज किया था आरडी बर्मन ने, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज में। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। yeah!

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: ओए होए होए होए, क्या गाना है ये खुशबू फिल्म का।
1: ऐसे सुनो तो लगता है कि थोड़ा सैड गाना है, लेकिन ध्यान से सुनो तो लगता है कि कितना फिलोसोफिकल है, कितना डीप है, इतना डीप कि डुबकी लगा के समझना पड़ता है। गुलजार साहब के लिरिक्स हैं भाई, सरफेस पे सतह पे थोड़ी ना समझ में आ जाएंगे, गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या लिखते हैं गुलजार साहब, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए, रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए, कोई सहारा मझधार में मिले वो अपना सहारा है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। आर डी बर्मन की ये कॉम्पोजिशन थी, किशोर कुमार ने गाना गाया था, और फिलोसोफिकल मूड से मूड थोड़ा मस्त करते हैं ये अगला गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 1984 की फिल्म सनी से ये गजल हमने सुनी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिल्म जब आई थी ना उस दौरान 1984-85 में, इसी सब्जेक्ट पे दो और फिल्में आई थी जिसमें अगेन स्टार सन्स थे। अच्छा, सनी फिल्म में सनी देओल थे, धर्मेंद्र के बेटे। दूसरी जो फिल्म थी जमीन आसमान, उसमें थे संजय दत्त, सुनील दत्त साहब के बेटे। और एक और फिल्म जो आई थी उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसमें थे सुनील आनंद, देव आनंद के बेटे। लेकिन ये जो बाकी की दो फिल्में थी वो इतनी नहीं चली। इनके कंपैरिजन में सनी फिल्म वाज अ हिट। वैसे ये सनी फिल्म डायरेक्टर राज खोसला साहब की एज डायरेक्टर लास्ट फिल्म थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। और अभी सुन लेते हैं एक और ब्यूटीफुल गजल राइट हियर ऑन मिर्ची।
1: और आहिस्ता कीजिए बातें,

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन.
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
13: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

1983 की फिल्म मासूम, जिसमें उर्मिला मातोंडकर ने एज चाइल्ड एक्टर काम किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उनके साथ जुगल हंसराज भी थे एंड इस फिल्म में तो वो दोनों छोटे छोटे थे, भाई बहन बने थे, पर जब ये बड़े हो गए थे तो 1994 की एक फिल्म में एज लीड एक्टर्स एज रोमांटिक पेयर इन्होंने काम किया था। दैट फिल्म वॉज आ गले लग जा। एंड मासूम फिल्म में शबाना आजमी उर्मिला मातोंडकर की मॉम प्ले करती हैं। एंड एक और फिल्म थी 2003 की तहजीब, जिसमें भी ये दोनों मदर डॉटर प्ले करती। एंड इन रियल लाइफ आल्सो ये दोनों बहुत क्लोज है। पता नहीं कुछ टाइम पहले आपने शबाना आजमी के बर्थडे के फोटोज वीडियोज सोशल मीडिया पे जो शेयर किए गए थे उसमें उर्मिला मातोंडकर को नोटिस किया था कि नहीं किया था। दीज टू हैव बीन क्लोज सिंस मासूम डेज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

फ्राइडे का मतलब है फिल्मी वीकेंड का ट्रेलर और मिर्ची सिद्दी के साथ मस्ती का सुपर हिट पिक्चर। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और फ्राइडे इवनिंग का फील ही ना अलग होता है, मतलब बॉस के ईमेल्स भी ना इतने हैवी नहीं लगते और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आज रात क्या देखे। और बॉलीवुड का असली मजा ही इस वीकेंड पे है। ओटीटी पे फ्रेश ड्रॉप्स, थिएटर में बिग क्लैशेस और बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स, सब कुछ हैपनिंग है दोस्तों। और आपकी फिल्मी दोस्त मिर्ची सिद्दी लेकर आई है आज शाम का परफेक्ट एंटरटेनमेंट गाइड। तो मुझे बताइए कि फ्राइडे नाइट में आपका प्लान क्या है, थिएटर या टिकट या ओटीटी का रिमोट। डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और आपके लिए स्पेशल फ्राइडे पिक्स आने वाले हैं जल्द आफ्टर दिस सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Campana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
2: कितने दिन तक?
3: ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: की टाइम।
1: काम भी हो और घर का कंफर्ट भी हो, क्या ये ड्रीम जॉब जैसी बात नहीं लगती? शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी एंड आई एम ब्रिंगिंग यू अ लिटिल होप एंड अ होल लॉट ऑफ गुड वाइब्स। जी हाँ, जिंदगी काफी बदल चुकी है, अब काम सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। इमेजिन एक ऐसा करियर जहां आप हेल्थ केयर वर्ल्ड का पार्ट भी हो और फिर भी काम भी अपने घर के कंफर्ट से कर पा रहे हो। तो बस कुछ महीनों की ट्रेनिंग और आप बन सकते हो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट। AIMS एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो फुल्ली ऑनलाइन है और अब आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ्लेक्सिबल, रिमोट और ग्रोइंग करियर चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन को एट 908-222-0002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu, क्योंकि हर बड़ा सपना एक स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's go on donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Nel Chile.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La virtual la Burga.
0: Melchi Burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us? It's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State comptroller.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकेंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। वेदर हैज बीन वेरी प्लेजेंट, इट इज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड इन ऑब्जर्वेंस ऑफ मेमोरियल डे एंड वी पॉज टू ऑनर एंड रिमेंबर द मैन एंड वुमेन हु सर्व अवर कंट्री। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स एंड द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट। ऑल्दो वी एंटिसिपेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू डिक्लाइन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड। And this mortgage rate prediction is still 2030. New home buyers who are sitting on sidelines waiting for rates to drop, please give it up, those hopes, and jump in the market again. Need help with realtor in your area or a pre-approval? Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed mortgage rate 6.25%. 20-year fixed mortgage rate 6.125%. 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. We have a new program for investors. Minimum down payment required is 20. No income documents required. No leases required. And the loan can be done under an LLC. So those who are buying investment properties are loving it, and we have been very successful in closing those loans in 30 days and less. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Namaste, Islam and Shastri Akal Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12. A historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
6: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
5: Paid for by Sujit Singh for Congress.
7: Finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-tunky, have a funky time.
2: दोस्तों ओटीटी लवर्स के लिए भी मसाला रेडी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, मसाला माने प्राइम वीडियो इंडिया का लुक के एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें नजर आ रहे हैं किंग, राशि खन्ना, लक्ष्मीवीर सिंह सारण और पलक तिवारी। और वैसे तो यार ट्रेलर देख के ना बहुत ही वाइब यूथफुल, केओटिक और थोड़ा सा कि ये गैंग वो गैंग है जो थोड़ी बहुत गड़बड़ करने वाली है, यही फील आ रहा था। और मुझे तो लगता है कि ऐसे शोज का चार्म तब होता है जब कैरेक्टर्स थोड़े फ्लॉड होते हैं, थोड़े फनी होते हैं और थोड़े ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। सो इट इज परफेक्ट फॉर दोज पीपल जो वीकेंड पे बोलते हैं कि यार कुछ लाइट लगाओ, दिमाग को ज्यादा तान नहीं चाहिए। तो आप भी बताओ दोस्तों, क्या आप ओटीटी पे कॉमेडी केओस देखते हो या फिर सीरियस थ्रिलर्स? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा हूँ सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
9: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. खाओ तो जानो.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: मिर्ची फ्रेश माल.
14: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलेडी के लिए सुनो खासियत.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हमारी तो पारी हो रही है, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, वीकेंड आ चुका है और सबके पार्टी के प्लान तो बन ही चुके होंगे, लेकिन वीकेंड में भी अलग अलग टाइप के पार्टी करने वाले होते हैं। एक होते हैं वो जिन्हें बाहर जाकर खाना होता है और एक होते हैं वो जिन्हें घर पर ही खाना होता है। और फिर आते हैं मेरे जैसे तीसरे टाइप के लोग जिन्हें घर पर लजीज खाना तो बनाना होता है, जैसे शाही पनीर, पनीर टिक्का वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ तंदूर में ज़्यादा वक्त नहीं करना होता। तो ऐसे मसले का ना एक ही हल है और वो है दीप नान, क्योंकि दीप नान में मिलेंगे वही ट्रेडिशनल टेस्ट एंड फ्लेवर, वही क्रिस्प, वही फ्रेशनेस जो ऑथेंटिक तंदूर के नान सा हो। और ये बने भी जल्दी तो आपकी पार्टी में देरी भी नहीं होगी। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए आपकी शाही डिश का साथी दीप तंदूर नान फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। और आपके शाम का साथी तो है ना मेरा ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Namaste, Islam and Sastri Akal, Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12. A historic opportunity to bring your wife to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
3: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
2: Paid for by Sujit Singh for Congress.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिट्री सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la burga, burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे, आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था, और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहां हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है, जहां सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क की नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना जबरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।